उत्तम श्लोक साध के बचन अमूलिक लाल है रतन सुन कुमाप्त होत उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा काय मन लगा रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत के माथे नान उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन

सब ते उच्चता की नानक ए गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हरे अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा

विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जो सहज गाए पियावे हो रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पावहो सुख सहजे

गुरमुख सज्जन जितने भी माई भाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के पवित्र कलमा अंदर अमृत वेले दियां हाजरियां भर रहे हो सोहने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो। बहुत बख्शिश होवे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हों उत्ते गुरु का कर्म होवे।

स्वर्ण परयो पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाव स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइया पाइया सर्व निदाना कर कृपा।

कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

भूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद। नमो सर्वमान्य समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे इंद्र संगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे पर भंगी परमाथे, समस्ती में भूते कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वर परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वर परम बुद्धे, नमो शस्त्र पाणि, नमो अस्त्र पाणि, नमो परम ज्ञात, नमो लोकनाता भेखीय भरमीय भोगीय भुगते, नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते, नमो नित नारायण कूर कर्मी, नमो प्रेत प्रेत देवी सुकर्मी, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो सा साहु, नमो भू भूपे, नमो दान दान, नमो मन मान, नमो रोग रोग, नमो अस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्र, नमो यंत्र यंत्र, नमो इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा मृत कर्ता दूर दंग अगंग ओ हरता, पारम परम परमेश्वरम पुष्पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तहमं तेरा जो चाचरीशं जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है आजू है आदेश है अपे है भुजंग पर्यात छन अगाध्य अबाध्य आनंद स्वरूपे, नमो सर्व मान्य समस्ती निदान, नमस्वंग नृनाथे, नमस्वंग परमाथे, नमस्वंग अगंजे, नमस्वंग अपंजे, नमस्वंग अकाले, नमस्वंग अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो सा साजे, नमो साहे, नमो महमाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञान, नमो सर्व मंत्र, नमो सर्व जंत्र, नमो सर्व कृष्ण, नमो सर्व कृष्ण, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिद्य समस्तं प्रसिद्धे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा सिद्धं निवासी, चार प्रशांद उपय प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग प्राण सर्वंग भोगता सर्वंग भोगता सर्वंग देवं सर्वंग देवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शंतवे प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्वमंत्र मान देव भेवे आद उदार सर्व पालक सर्व काल सर्व को पुनकाल जत्र तत्र विराज हे रूप रूप रसाल, नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेखो आद पुरख उदार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो कल्यु अनुराग, नाम काम विहीन पेखता ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदै मानता एक मूर्त अनेक दर्शन की मूर्त अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक, देव भेव न जाने निवेद और कते रंग न जात पास हो जाने के जीव आत्मा न जात जा जाकर जन्मन विहीन चक्कर बक्कर फिर चत्र चकमान ही पुरतीन, लोक चौदह के बिखाए जग जाप ही जेह जाप आदेव अनाद मूर्त था प्यो सब जेह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुख अपार सर्व सोर च्यो स्वयं पवगण भंजनार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत अलख भे संग्राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्वगंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्वगंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंगनात्म एक पुरख पारु सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व तीर्भेक्ष सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख,

ए रसना तू अनरस रात रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए, होठ कितै जित्र हर्ष पल्लै न पाए।

नानक जिन करत कारण किया सो जाने करतारपुर बिन सतगुरु किने न पायो।

सुने यार हमारे सजना, एक करो बेनतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिराओ खोजंतिया, तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक भोरी दर्शन दी जै, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पी नाह तीरी जै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चात्रिक जिवै तिसंतिया, जन नानक गुरपुरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया, जन नानक गुरपुरा पाया।

दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी नूर अरसह कुरसह चटिया सचे पात साह मल जन्म जन्म दी सजना सचा पात साह सिर साह दे।

के अत संसार गुरबिन नाही सूझे, गुरबिन गोर अंधार, गुरु बिन समझ नया बलिहारी।

0: सूरज चढ़े हजार ए चन होंदे गुरबिन गोर अंधा मुर्शदे हर चीज में बायद बसे भाई नंदलाल जी मुर्शदे हर चीज में बायद बसे मुर्शदे कामल पूजा मानद कसे मुर्शदे हर चीज में बायद बसे मुर्शदे कामल कुजा मानद कसे मुर्शदे कामल इलाजे दिल कुनद मुर्शदे कामल इलाजे दिल कुनद ई मुरादे दिल से दिल हासिल शबद भाई साहब जी कामल मुर्शिद पूरे गुरु विच और अधूरे गुरु विच की फर्क है भाई साहब जी ने बचन उच्चारण किया भाई नंदलाल जी आखन लगे मुर्शिद हर चीज में बायद बसे हर चीज दे बहुत गुरु हो सकते हैं मुर्शदे हर चीज में बायद बसे बाशिद बसे भी पाठ अंदर मैं बायद बसे भी पढ़े हर चीज दे बहुत गुरु हो सकते हैं मैं जिन्हों तो संगीत विद्या लाई उन्होंने गुरु जी आखते सी बी एस नारायण जी जलंधर पर पूरे गुरु विच और बाकी गुरुओं विच थोड़ा फर्क है किवें जी
1: मुर्शदे हर चीज में बायद बसे मुर्शदे कामल कुजा मानद कसे
0: पूरा गुरु कोई एक हुंदा नहीं जी पूरा गुरु करदा की है अखन लगे
1: मुर्शदे कामल इलाजे दिल को नद
0: पूरा गुरु इस दिल दा इलाज करदा है कि दिल नु लगे हुए दुख दुखड़े दूर कर दिंदा है जी इस करन दा फिर कुछ कुछ लेंदा भी है कुछ फीस भी है उहदी भाई साहब आखन लगे हाँ मुर्शदे कामल दी पूरे गुरु दी फीस भी है जी की
1: मुर्शदे कामल इलाजे दिल को नद
0: उसकी फीस है कि जिस चीज का इलाज कराना है ना ये उन्हें देनी पड़ेगी कि दिल उन्हें देना पड़ेगा पाप फुली सरेंडर करना पड़ेगा
1: मुर्शदे कामल इलाजे दिल को नद ही मुरादे दिल
0: से दिल हासिल शबद अपना दिल पेटा करना की है ये आखना की
1: तू मैं

या फिर दिल देना, दिल भेटा करना, फुली सरेंडर, आत्म समर्पण करना की है। ये आखना की किस ही बोल को मंच ने माणी हिक दू, किसी नु कोई आसरा हो।

सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी का ही उपास है। किसी कोई को मंच निमाणी हित तू क्यों ना मरी जय जालक चित ना आप।

बहुत ही प्यारा, अत्यंत प्यारा। ग्रामर विच एक मिनट है, इंग्लिश की ग्रामर जो पढ़ते सन कॉलेज तो उदों ग्रामर विच 3 डिग्रीज होंगे सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मैं जो बच्चे पढ़ते भी हम तो कहना चाहता हूँ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आ तेरा मुंह तो दिमाग पॉजिटिव, आ तेरा मुख तो दिमाग कंपैरेटिव। तो जो तो बहुत ही प्यार विच आ गया, माँ का दिल उछाले प्यार मारता है, बच्चे ने फड़ के कहती है आ तेरा मुखड़ा तो पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इस सुपरलेटिव व्याकरण तौर पर सतगुरां ने आख्या अत दा प्यारा साजनड़ा, साजन अखर भी वरत्या सतगुरां ने बाणी अंदर, पर इतने सतगुरां ने एक शब्द होर आंदा है जो दिसै गुर सिखड़ा, सिखड़ा अत दा प्यारा, ये तो उपर होर नहीं। इसे शब्द सतगुरां ने इतने वरत्या जानी अड़ा अत दा प्यारा, उहदे वर्गा होर कोई नहीं। इसे तरह पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड दैन सुपरलेटिव डिग्री ग्रामेटिकली सतगुरां ने वरती, आखन लगे सब आखो जी।

0: जैसे बोझ भरी नाव, पैगंबर जैसे बोझ भरी नाव, आंकरी दो पार होए पार परे पूर, सबे कुछ बेहात है जैसे एकाहारी एक घरी पाकशाला है, भोजन के बिंजना स्वाद के आघात है, जैसे राजद्वार जा कत जोहार जन एक घरी पक्ष है, देश भोगता है खात है आठ ही पहर साठ घरी में जो एक घरी आठ ही पहर साठ घरी में जो एक घरी साध समागम कर निज कर जात है मेहमा
1: साधु संग की,
0: हरदी और चूना मिल अन्न पर्ण जैसे हरदी और चूना मिल अर्न बर्न जैसे चतर बर्न के तंबोल रस रूप है, दूध में जामन मिले दद के पखानियत खांड कित चून मिल बिंजन अनूप है, कुसुम सुगंध मिल तिल से फुलेल हो सकल सुगंध मिल अर्क जातूप है, दोए

नहीं दद सा पिता पितामा पर पितामा सज्जन कुटुंब सुत बांधव ना प्राता है नहीं नन सा माता पर माता वृद्ध माता मामू मामी मासी मौसा विभित बिखे आता है नहीं ससरा सास सारा सारी नहीं ससरा सास सारा सारी नहीं विरती सर और जाचक ना दादा

का वेद पुराण सिमरत सुधा अखियर कीने राम नाम एक आखियर किनका एक जस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखिए कै दर्श तो हारो नानक उन संग मोहे उधारो

रे जन कोट हर हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कह हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग कै नानक जन कै बिरत बबेकाय हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहीं वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मार खजीना हर धन जन कौ आप प्रभु दीना हर हर जन कै ओठ सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओठ पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रकट नहीं छपै हर की भगत मुख बहु करे नानक जन संकेते तरे

अपन कर कर तू ठाकुर तुम पह अरदास दियो पिण सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमराय अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमराय सूत्र धारी तुम ते हुए सुभाग्यकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक

आवत जावत जन्मे मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पहमाने आपै आप आप करत नवेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। पाप सियाण छल तेरा तो सब कह जाने आत्म की रह जिस पावै तस लय लड़ लाए थंत नंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक। काम क्रोध यर लोभ मोह बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी।

ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रकाश जैसे धरु परे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जाग, ब्रह्म ज्ञानी अब त्याग, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कहे कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुसह निवास मान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का भट प्रता, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बाढ़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी कहो बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी कहो खोज महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कुन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दयाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की कात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नान, ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सा सृष्टि करता, ब्रह्म ज्ञानी सा जीवै निमरता, ब्रह्म ज्ञानी भोगता जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का ना, ब्रह्म ज्ञानी का सुप्रहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी अनिरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोका, उरता राजूम तरना सर्व मैं भिख्या भगवान, निमका निमक ठाकुर नमस्कार, नानक यो अपरस सगल निस्तार इष्टमनी, मिथ्या नाही रसना परसा, मन मै प्री निरंजन दरसा, पार त्रिया रूप न भिख्या नेत्र, सार गिटा संसाहीर करना सुनी काहू की निंदा, सब ते जानी आप सुकू मंदा, गुरप्रसा विखिया बरहर मन की बासना, मन ते डर इंद्री जय पंज दो ते रहत, नानक गुर मदेक वैसा परस, बैसनो सो जैसी बरसो बरसाना, विष्णु की माया ते हुई पिन, करमा करत हुआ दे करमा, तेह बैनु का धर्मर धर्म काहू भर की शानी बाशा, केवल भगत कीर्तन संग्राचा मंद।

सलोका सुखी बसै मसकीनिया आपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर बगले अष्टपदी जिसका यंत्र राज बिमान सो नरक पति होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जनता आप सकौ कर्म बंत खावै जन्म रह बहुजोन परमावै तन भूमका जो करै गो मान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानकी है मुक्ता गै सुख पावै तन हंता होए कर गरवावे तृण समान कर संग ना जावे बहु लस्कर मानुख उपर करे आस पर भीतरता कोय विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसवंत किसने बदे आप अहंकारी धर्मराज तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सुना छो जन दानक दरगह परवान कूट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै कर दरगह कहो कैसे गवै आप सकौ जो भला कहावे ते सह भलाई निकल न आवे सर्व की रेंजा का मन होए कहो नानकता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझसे गछ होए तब इसका सुख नाही को होए जावे जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तार को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मग्न संग माए तब लग धर्म राय देस

बोलहे हर मुखे, सदा सदा जान होते सुखे। एको एक एक पछाने तिरत की हो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नाम तने निरंजन न जान्या, नानक तने निरंजन जान्या, गुर प्रसाद अपने आप सुजाए, तिसकी जान हो तिस न बुझाए। सार संग हर हर जस कहत, सर रोकते हो हर जन रहत, अंदन कीर्तन केवल बख्यान, कृष्ण में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, नान कटिया तिसकी कटिया जम की फसा, पार ब्रह्म की जिसमन भूख, नानक तसन लागे दुखा। जिस को हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहिला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो के स्थिर डराए, जैसा सा तैसा दृश्य आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोद सोद सीजिया, गुर प्रसाद तासा बुझिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुख में सोई स्थूल, न किछ जन में न किछ मरै, अपन चरित आप ही करै। आवन जावन दृष्टिया दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठा, आपे आप सगल में आप, अनेक जुग तरच था प्यो थाप, विनाशी नाही किछ खंड, तारण तार रहो ब्रह्मांड। अलख भेव पुरख प्रताप, आप जपाई त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुशोभावंत, सगल संसार द्रत निवंता। प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख विसारन, आपे बेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप पहे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करे बड़ पागे, नाम जपत पावे बिसराम, नानक तिस पुरख को तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय होवै सो होए, करण हर पछाण सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा देशाना, जिस उपजे तिस माई समायो, सुख निदान उन्हु बने आए।

सच उपदेश सेवक दे मोह माया के संग न ले मन मै रखा रे का अंधकार दीपक परगासे नानक परम बहु दुख तेना से तब तुम्हारी ठार बरताई अनंत पया दुख ना ठे भाई जन मन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चुका निरपौ हो बसे सगल व्याधमन ते खै नसे जिसका सातन कृपा तारी सात संग जब नाम मुरारी थित पाई चुके परम गबन सुन नानक हर जस श्रवना निर्गुण आप सरगुर पी हो करा तार जिस मोह

अष्टपदे जाचक जान जाच प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम साजना की मांगा तूर पार ब्रह्म सरदा पूरा सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम ते आवो चन कमल छोला के प्रीत भक्त करो प्रभु की नितनीता एक ओट को आधार नानक नाम मांगे नाम प्रभु सार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दिस महासुख होए हर स्वाब बिलक होए जन चाख्या से जानते उताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो पर परे प्रेम रस रंग उपज चाओ साध के संग परे सान्यान सब त्याग अंतर प्रकाश अंदर लेव लाग मड़ पागे जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मतले जन को प्रभु होयो दयाल सेवकी ने सर निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मन दुख भ्रम गया एच पुनी सरदा सा पूरी रब रहया सत्संग जोरी जिसका साथ न लिया मिला नानक भक्ति नाम समाए सोख बिसरज काल न पाने सोख बिसरज किया जाने सोख बिसरज जन सब किछ दिया सोख बिसरज जीवन जिया सोख बिसरै जगन महराख गुर प्रसाद को बेला लख सोख बिसरै जि विकते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गाढ़ गोरे पूर तते है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करहु काम अंत्यग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तनो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सकल दुख कहो वत नास।

है कौन कौ मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश छल सिद्ध लक्ष कौ की सा, ज्योत स्वरूपी जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावत है, किसह भूकम दृतावै कर्ण करावन हार, कर्ण करावन कर्ण हार नानक अर्थिका नाई समार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कबर माए बाप मित्र सत भाई, जय सर्व कला पे प्रवीण तय बीज देव कहा को चीना, जब अपने आप उतारे तब सगन अब सगन कहा विचार है, जय अपन ऊंचे अपने आप निरत है कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा, बिस्मन बिस्म प्रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप, जय छल छेद भीर समाय ऊहा किसे व्याप्त माया, आप सुखा आप हया देश तय गुण का नाही प्रवेश, जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिन्ह किस लागे चिंता, जय अपने आप तियारत है कौन कथ है कौन सुन निहारा, बहु बे अंत उचते ऊंचा नानक आप सुखा आप पहुंचा, जय आप रचय प्रपंच कार तय गुण में कीनो विस्तार, पाप पुन तय पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल होमै वो परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान, आपन खेल आप कर देख खेल संकोच है तो नानक कह, जय अवगत भगत तय आप, जय पसरै पासार संत प्रताप, दुहु पाख का आप है तनी उनकी स्वभाव हो बनी, आप है कौत कर अनंत चोज आप है रस भोग निर्जोग, जिस भाव है तिस अपन नाय लावे, जिस भाव है तिस खेल खेलावे, बेसुमार अथाह अगंत

सगल समिग्री एक सक हट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है। नौ निध अमृत प्रभु का नाम देहि महेश का विश्राम सुन समाधान तय नाद कह न जय चिरज विस्मादा।

दसवीं प्रेथाम भगवती सिमरका गुरु नानक नहीं त्याय हे रंगर गुरुदेव अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदरों सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जह डिठी सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया करणों दया बताई सब थाई हुई सहाय